0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और हमारी शांति का स्रोत हैं।

बुद्धिमान के सदृश कौन है? सृष्टि का रहस्य कौन जानता है? प्रज्ञा मनुष्य का मुख आलोकित करती और उसकी कठोरता को दूर कर देती है। उपदेशक कहता है, ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण तुम राजा की आज्ञा का पालन करो। तुम उसके यहाँ उतावली में नहीं जाओ। तुम किसी बात के लिए राजा से अनुरोध नहीं करो, क्योंकि वह जो चाहता है वही करेगा। राजा का मत निर्णायक है। कौन उससे यह पूछ सकता है कि आप यह क्यों कर रहे हैं? श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के प्रथम 4 पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 16 पदों वाले उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय में उपदेशक सुलेमान बुद्धिमान कौन है, शासन किस प्रकार का होना चाहिए तथा ईश्वर की योजनाओं को समझने में मानव बुद्धि की असमर्थता के प्रति बाइबल पाठकों का ध्यान आकर्षित कराता है। समझदार व्यक्ति कौन है, यह सवाल कर सुलेमान एक ऐसे समझदार और विवेकी व्यक्ति की तलाश करता है जो कि विवेकी और प्रज्ञावान होने के नाते सृष्टि के रहस्य पर चिंतन करता हो। वह जानता था कि केवल समझदारी ही इंसान को खुश रख सकती थी। समझदारी ही उसके चेहरे पर खुशी ला सकती थी। समझदारी से ही वह अपने सारे काम अच्छी तरह से निपटा सकता था। इसीलिए हम सब से आग्रह करता है कि हम समझदार बने तथा समझदारी से, बुद्धिमानी से अपने सारे कार्यों को संपादित करें। कहता है, ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण तुम राजा की आज्ञा का पालन करो। श्रोताओ, इस स्थल पर हमने आपको रोमियो को प्रेषित संत पॉल के पत्र के 13वें अध्याय में निहित बात का स्मरण दिलाया था, जिसमें संत पॉल भी यही समझाते हैं कि अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ न हो। फिर लिखते हैं, जो अधिकारियों का विरोध करता है वह ईश्वर के विधान के विरुद्ध विद्रोह करता है और अपने पर दंड आज्ञा को बुलाता है। कहते हैं, शासकों से भय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शासक सत्कर्म करने वालों में नहीं बल्कि कुकर्म करने वालों में भय उत्पन्न करते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप भय मुक्त होना चाहते हैं तो सत्कर्म करते रहें और वे यानी कि अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वे आपकी भलाई के लिए ईश्वर के सेवक हैं। श्रोताओ, शासन के अधीन रहने से ही समाज में व्यवस्था कायम रहती है। हम अधिकारियों के अधीन इसलिए नहीं रहें क्योंकि हम उनसे डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि इस धरती पर वे हमारे प्रतिनिधि हैं और उनके सम्मान के द्वारा हम दर्शा देते हैं कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। अस्तु, ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण हम अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करें। हम यह माने कि जीवन के गहन रहस्य, अन्याय, दुख और जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं उससे आगे देखने की जरूरत है। अंत को नहीं, अनंत को देखने की आवश्यकता है। ईश्वर की योजना को पहचानने की आवश्यकता है।

आगे 8वें अध्याय के 5वें और 6वें पदों में राजा और शासक के ही संदर्भ में उपदेशक कहता है, जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। जो बुद्धिमान है वह हर काम का उपयुक्त समय और उचित ढंग जानता है, क्योंकि हर काम का उपयुक्त समय और ढंग होता है। इन पदों में उपदेशक ने हम सबको ईश नियमों का स्मरण दिलाया है। वह कहता है कि जो ईश नियमों का पालन करता है उसका कभी भी अनिष्ट या कोई नुकसान नहीं होगा। इस धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि रूप में हमारे समक्ष रहने वाले हमारे माता पिता, हमारे कार्यस्थलों पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी या फिर राजा शासक, जिन्हें भी हमारी जिम्मेदारी सौंपी गई है, यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो सुखी होंगे, हमारा भला होगा। उपदेशक यह भी कहता है कि हर काम का एक उचित समय और तरीका होता है और उसी तरह हमें अपने कामों का संपादन करना चाहिए। श्रोताओं, जब व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, तब उसका दुख अनायासी बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में उपदेशक हमें याद दिलाता है कि हर काम का या हर मामले का एक निश्चित समय होता है और एक सुनिश्चित तरीका होता है। हालांकि बुद्धिमान व्यक्ति यह जान लेता है कि उसे कब क्या करना है, तथापि वह सब कुछ नहीं जान सकता, सब कुछ का फैसला अपने आप नहीं ले सकता। उसे भी मौन रहकर कुछ प्रार्थना और कुछ चिंतन के बाद ही यह विवेक मिलता है कि क्या करें और क्या नहीं करें, उसे कब करें और उसे किस तरह पूरा करें। आगे इसी अध्याय के अग्रिम पदों में, यानी कि 6 से लेकर 8 तक के पदों में उपदेशक कहता है, मनुष्य के लिए यह बड़े दुख की बात है कि वह भविष्य को नहीं जानता। उसे कौन बता सकता है कि क्या होने वाला है? किसी को अपने प्राणों पर अधिकार नहीं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। बाइबल आचार्य मॉर्गन कहते हैं, सबसे बड़ी समझदारी चीजों को या स्थितियों को जैसी हैं वैसी ही मान लेना। उपदेशक कहता है कि अपने प्राणों पर किसी को अधिकार नहीं होता, किसी के पास वह शक्ति नहीं होती कि वह मौत के दिन को रोक ले, और इसीलिए ईश नियमों के अनुपालन का मार्ग दिखलाता है। जीवन पर उसकी समझ की कमी ने ही सुलेमान को निराश कर दिया था। तब वह समझ पाया कि मौत के सामने इंसान की बेबसी और भी ज्यादा निराशाजनक होती है। उसने देखा कि मौत किसी को जीतने नहीं देती और उस लड़ाई से किसी को छुटकारा नहीं मिलता। इसीलिए उपदेशक कहता है कि जो उसकी यानी कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौथवें ने बृहस्पतिवार को यरूशलेम की हिब्रू यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें हिंसा एवं विभाजन से भरी दुनिया में उम्मीद, शांति और एकता की रोशनी बनने की हिम्मत दी। पोप ने कहा, ऐसे समय में जब अक्सर हिंसा एवं तीखी बयानबाजी होती है, आपकी अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटी समुदाय के सदस्य सच्ची शांति के निर्माता बने। एक ऐसी शांति जो बिना हथियार के हो, विनम्र हो और मजबूत हो एवं लोगों के बीच मेल जोल के लिए काम करे। पोप ने अपने संदेश की शुरुआत उनका स्वागत करते हुए की और उम्मीद जताई कि उनका यहाँ होना उन्हें वैटिकन सिटी और रोम दोनों के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने का मौका देगा, जो न सिर्फ ख्रिस्ते धर्म की शुरुआत एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐसे जगह भी है जिससे हजारों सालों से संस्कृतियों और लोगों से मिलने को बढ़ावा दिया है। उन्होंने याद किया कि यूनिवर्सिटी लंबे समय से मिलने जुलने की जगह रही है, जो विद्यार्थियों और विभाग को प्रज्ञा में बढ़ने के लिए एक साथ लाती है। उन्होंने माना कि यह हमेशा आसान नहीं होता। यूनिवर्सिटी को लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि अर्थपूर्ण मुलाकातों के मौके मिलते रहें। उन्होंने कहा कि यह किसी भी उच्च प्रशिक्षण संस्थान के जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, क्योंकि दूसरों के साथ हमारे रिश्ते, हमारी भाषाएं और हमारी संस्कृतियां, इंसान के रूप में हम कौन हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है। पोप लियो ने कहा कि मिलने जुलने के सार्वजनिक जगहों के रूप में यूनिवर्सिटी पारंपरिक रूप से बातचीत के लिए एक खास स्थल रहे हैं, जहां ज्ञान की खोज शैक्षणिक समुदाय के अंदर विचारों के लेन देन से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा, ऐसे माहौल में जहां सम्मानपूर्वक बातचीत संभव हो, हर कोई दूसरों के नजरिए और साक्षात जीवन से सीखकर ज्ञान बढ़ा सकता है, यहां तक कि उनसे भी जिनसे वे सहमत नहीं हो सकते। पोप लियो ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, ऐसे हालात में धैर्य एवं लगन से धीरे धीरे गलतफहमी और भरोसे की किसी भी रुकावट को तोड़ने की दिशा में काम करना संभव है। संत पापा ने कहा कि ईश्वर हमसे दुनिया में शांति लाने के लिए अपने माध्यम बनने के लिए कहते हैं, जिसके लिए हमें शुरुआत खुद से करनी होगी। उन्होंने कहा, शांति को नामुमकिन एवं हमारी पहुंच से बाहर बनाने के बजाय हमें इसे अपने समुदायों में बढ़ावा देना चाहिए और अपने जीवन में इसका स्वागत करना चाहिए। अंत में पोप ने उम्मीद जताई कि शांति निर्माताओं को तैयार करके यूनिवर्सिटी समुदाय एक ऐसी दुनिया में उम्मीद एवं एकता की किरण बन सकता है जो तेजी से बढ़ती जा रही है। पोप लियो चौदहवें ने स्पैनिश सिविल युद्ध के दौरान धर्म से नफरत में शहीद हुए 20 पुरोहितों के संत बनने और 5 ईश सेवकों के विरोचित सद्गुणों को मान्यता दी, जिनका जीवन मिशनरी जोश, उदारता, प्रार्थना और कलीसिया की निष्ठापूर्ण सेवा से पहचाना जाता है। संत पोप लियो चौदहवें ने वैटिकन के संत प्रकरण विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल मार्चेलो सेमेरारो के साथ एक मुलाकात में संत घोषणा हेतु नए उम्मीदवारों की आज्ञाप्तियों को अनुमोदन दिया। ईश सेवक शहीद जुआन तेरेस और उनके 19 साथी, जो धर्म प्रांत पुरोहित थे, वे स्पेन में अगस्त और सितंबर 1936 के बीच विश्वास के प्रति घृणा के कारण अत्याचार के शिकार हुए। ईश सेवक जूलियो मारिया दी लोम्बार्दे पौत्र परिवार को समर्पित मिशनरी धर्म संघ के सदस्य एवं मरिया के निष्कलंक हृदय की पुत्रियों के धर्म संघ, पौत्रतम संस्कार की कुंवारी मरियम की मिशनरी धर्म संघ और पौत्रतम संस्कार के हमारे प्रभु की धर्म बहनों के धर्म संघ के संस्थापिका थीं। उनका जन्म बेल्जियम में हुआ था। ईश सेविका मरिया तेरेसा तालोन निष्कलंक मरिया के पल्ली दौरे के लिए समर्पित धर्म संघ की संस्थापिका है। उनका जन्म 10 मार्च 1954 को अमेरिका में हुआ था। ईश सेविका मरिया अग्नेस त्रिवियोली सेंट जोसेफ के धर्मी सेवक धर्म संघ के सदस्य और संस्थापिका थीं। उनका जन्म 20 अप्रैल 1879 को इटली में हुआ था। ईश सेविका क्लारा एंड्रू वाई मालफेरी इंका के संत बर्थोलोमियो के जेरोम मठ की मठवासी थीं और ईश सेविका मरिया पेत्रा जोर्दानो प्रचारकों के ऑर्डर की मठवासी धर्म बहन थीं। उनका जन्म 4 जुलाई 1912 को इटली में हुआ था और निधन 21 जून 2006 को इटली में हुआ।
भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन बिल 2026 पर चिंताओं के बीच 28 जून को राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस मनाने का आह्वान किया है। भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने देश भर के सभी कैथलिकों से रविवार 28 जून को राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस मनाने की अपील की है। यह अपील प्रस्तावित विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम संशोधन बिल 2026 से जुड़ी चिंताओं के जवाब में की गई है। उम्मीद है कि इस बिल पर संसद के आने वाले मानसून सत्र में चर्चा होगी। भारत में कार्तिक कलीसिया के सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों को भेजे गए एक पत्र में सीबीसीआई के अध्यक्ष कार्डिनल एंटोनी फुले ने सभी विश्वासियों को देश, सरकारी अधिकारियों और सेवा के अपने मिशन को कलीसिया स्वतंत्र पूर्वक जारी रख सके, इसके लिए प्रार्थना में एक साथ आने हेतु आमंत्रित किया है। पत्र में कहा गया है कि प्रस्तावित कानून ने पूरे देश में कलीसियाओं और क्रिस्तीय संस्थानों द्वारा किए जाने वाले चैरिटेबल, शैक्षणिक, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक प्रेरिताय पर इसके संभावित असर को लेकर चिंता पैदा की है। समाज के गरीब, हाशिए पर पड़े और कमजोर तबके की सेवा करने की कलीसिया के लंबे समय से चले आ रहे समर्पण को याद करते हुए कार्डिनल पुले ने इस बात पर जोर दिया है, ये प्रेरिताएं प्यार, न्याय एवं दया के सुसमाचारी मूल्यों का एक ठोस उदाहरण है। विश्वास एवं एकता की भावना का आह्वान करते हुए सीबीसीआई अध्यक्ष ने दूसरे कलीसियाओं और ख्रिस्त समुदायों के साथ मिलकर चिंतन एवं प्रार्थना करने का आग्रह किया है। उन्होंने विश्वासियों को पौत्र मिस्सा, पौत्र संस्कार की आराधना, रोजरी माला विनती, प्रार्थना सभा और स्वेच्छा से उपवास द्वारा ईश्वर की प्रज्ञा, मार्गदर्शन और सुरक्षा पाने के लिए प्रोत्साहित किया है। बोर्गो वार्ता हमारे आम घर की देखभाल पर बातचीत के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जिसका उद्घाटन कस्तेल गंदोल्फो स्थित पोप के उद्यान में हो रहा है। पर्यावरण के प्रतिनिधियों ने लाउदातो सी गांव में वैश्विक मैत्री लॉन्च किया। 17 से 19 जून 2026 तक बोर्गो लाउदातो सी या लाउदातो सी गांव बोर्गो लाउदातो सी वार्ता के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।

मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और हमारी शांति का स्रोत हैं।

बुद्धिमान के सदृश कौन है? सृष्टि का रहस्य कौन जानता है? प्रज्ञा मनुष्य का मुख आलोकित करती और उसकी कठोरता को दूर कर देती है। उपदेशक कहता है, ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण तुम राजा की आज्ञा का पालन करो। तुम उसके यहाँ उतावली में नहीं जाओ। तुम किसी बात के लिए राजा से अनुरोध नहीं करो, क्योंकि वह जो चाहता है वही करेगा। राजा का मत निर्णायक है। कौन उससे यह पूछ सकता है कि आप यह क्यों कर रहे हैं? श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय के प्रथम 4 पद। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 16 पदों वाले उपदेशक ग्रंथ के 8वें अध्याय में उपदेशक सुलेमान बुद्धिमान कौन है, शासन किस प्रकार का होना चाहिए तथा ईश्वर की योजनाओं को समझने में मानव बुद्धि की असमर्थता के प्रति बाइबल पाठकों का ध्यान आकर्षित कराता है। समझदार व्यक्ति कौन है, यह सवाल कर सुलेमान एक ऐसे समझदार और विवेकी व्यक्ति की तलाश करता है जो कि विवेकी और प्रज्ञावान होने के नाते सृष्टि के रहस्य पर चिंतन करता हो। वह जानता था कि केवल समझदारी ही इंसान को खुश रख सकती थी। समझदारी ही उसके चेहरे पर खुशी ला सकती थी। समझदारी से ही वह अपने सारे काम अच्छी तरह से निपटा सकता था। इसीलिए हम सब से आग्रह करता है कि हम समझदार बने तथा समझदारी से, बुद्धिमानी से अपने सारे कार्यों को संपादित करें। कहता है, ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण तुम राजा की आज्ञा का पालन करो। श्रोताओ, इस स्थल पर हमने आपको रोमियो को प्रेषित संत पॉल के पत्र के 13वें अध्याय में निहित बात का स्मरण दिलाया था, जिसमें संत पॉल भी यही समझाते हैं कि अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ न हो। फिर लिखते हैं, जो अधिकारियों का विरोध करता है वह ईश्वर के विधान के विरुद्ध विद्रोह करता है और अपने पर दंड आज्ञा को बुलाता है। कहते हैं, शासकों से भय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शासक सत्कर्म करने वालों में नहीं बल्कि कुकर्म करने वालों में भय उत्पन्न करते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप भय मुक्त होना चाहते हैं तो सत्कर्म करते रहें और वे यानी कि अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वे आपकी भलाई के लिए ईश्वर के सेवक हैं। श्रोताओ, शासन के अधीन रहने से ही समाज में व्यवस्था कायम रहती है। हम अधिकारियों के अधीन इसलिए नहीं रहें क्योंकि हम उनसे डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि इस धरती पर वे हमारे प्रतिनिधि हैं और उनके सम्मान के द्वारा हम दर्शा देते हैं कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। अस्तु, ईश्वर के सामने अपनी शपथ के कारण हम अधिकारियों की अधीनता स्वीकार करें। हम यह माने कि जीवन के गहन रहस्य, अन्याय, दुख और जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं उससे आगे देखने की जरूरत है। अंत को नहीं, अनंत को देखने की आवश्यकता है। ईश्वर की योजना को पहचानने की आवश्यकता है।

आगे 8वें अध्याय के 5वें और 6वें पदों में राजा और शासक के ही संदर्भ में उपदेशक कहता है, जो उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। जो बुद्धिमान है वह हर काम का उपयुक्त समय और उचित ढंग जानता है, क्योंकि हर काम का उपयुक्त समय और ढंग होता है। इन पदों में उपदेशक ने हम सबको ईष्ट नियमों का स्मरण दिलाया है। वह कहता है कि जो ईष्ट नियमों का पालन करता है उसका कभी भी अनिष्ट या कोई नुकसान नहीं होगा। इस धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि रूप में हमारे समक्ष रहने वाले हमारे माता पिता, हमारे कार्यस्थलों पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी या फिर राजा शासक, जिन्हें भी हमारी जिम्मेदारी सौंपी गई है, यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो सुखी होंगे, हमारा भला होगा। उपदेशक यह भी कहता है कि हर काम का एक उचित समय और तरीका होता है और उसी तरह हमें अपने कामों का संपादन करना चाहिए। श्रोताओं, जब व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, तब उसका दुख अनायासी बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में उपदेशक हमें याद दिलाता है कि हर काम का या हर मामले का एक निश्चित समय होता है और एक सुनिश्चित तरीका होता है। हालांकि बुद्धिमान व्यक्ति यह जान लेता है कि उसे कब क्या करना है, तथापि वह सब कुछ नहीं जान सकता, सब कुछ का फैसला अपने आप नहीं ले सकता। उसे भी मौन रहकर कुछ प्रार्थना और कुछ चिंतन के बाद ही यह विवेक मिलता है कि क्या करें और क्या नहीं करें, उसे कब करें और उसे किस तरह पूरा करें। आगे इसी अध्याय के अग्रिम पदों में, यानी कि 6 से लेकर 8 तक के पदों में उपदेशक कहता है, मनुष्य के लिए यह बड़े दुख की बात है कि वह भविष्य को नहीं जानता। उसे कौन बता सकता है कि क्या होने वाला है? किसी को अपने प्राणों पर अधिकार नहीं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। बाइबल आचार्य मॉर्गन कहते हैं, सबसे बड़ी समझदारी चीजों को या स्थितियों को जैसी हैं वैसी ही मान लेना। उपदेशक कहता है कि अपने प्राणों पर किसी को अधिकार नहीं होता, किसी के पास वह शक्ति नहीं होती कि वह मौत के दिन को रोक ले, और इसीलिए ईश नियमों के अनुपालन का मार्ग दिखलाता है। जीवन पर उसकी समझ की कमी ने ही सुलेमान को निराश कर दिया था। तब वह समझ पाया कि मौत के सामने इंसान की बेबसी और भी ज्यादा निराशाजनक होती है। उसने देखा कि मौत किसी को जीतने नहीं देती और उस लड़ाई से किसी को छुटकारा नहीं मिलता। इसीलिए उपदेशक कहता है कि जो उसकी यानी कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने बृहस्पतिवार को यरूशलेम की हिब्रू यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें हिंसा एवं विभाजन से भरी दुनिया में उम्मीद, शांति और एकता की रोशनी बनने की हिम्मत दी। पोप ने कहा, ऐसे समय में जब अक्सर हिंसा एवं तीखी बयानबाजी होती है, आपकी अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटी समुदाय के सदस्य सच्ची शांति के निर्माता बने। एक ऐसी शांति जो बिना हथियार के हो, विनम्र हो और मजबूत हो एवं लोगों के बीच मेल जोल के लिए काम करे। पोप ने अपने संदेश की शुरुआत उनका स्वागत करते हुए की और उम्मीद जताई कि उनका यहाँ होना उन्हें वैटिकन सिटी और रोम दोनों के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने का मौका देगा, जो न सिर्फ ख्रिस्त धर्म की शुरुआत एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐसे जगह भी है जिससे हजारों सालों से संस्कृतियों और लोगों से मिलने को बढ़ावा दिया है। उन्होंने याद किया कि यूनिवर्सिटी लंबे समय से मिलने जुलने की जगह रही है, जो विद्यार्थियों और विभाग को प्रज्ञा में बढ़ने के लिए एक साथ लाती है। उन्होंने माना कि यह हमेशा आसान नहीं होता। यूनिवर्सिटी को लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि अर्थपूर्ण मुलाकातों के मौके मिलते रहें। उन्होंने कहा कि यह किसी भी उच्च प्रशिक्षण संस्थान के जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, क्योंकि दूसरों के साथ हमारे रिश्ते, हमारी भाषाएं और हमारी संस्कृतियां, इंसान के रूप में हम कौन हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है। पोप लियो ने कहा कि मिलने जुलने के सार्वजनिक जगहों के रूप में यूनिवर्सिटी पारंपरिक रूप से बातचीत के लिए एक खास स्थल रहे हैं, जहां ज्ञान की खोज शैक्षणिक समुदाय के अंदर विचारों के लेन देन से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा, ऐसे माहौल में जहां सम्मानपूर्वक बातचीत संभव हो, हर कोई दूसरों के नजरिए और साक्षात जीवन से सीखकर ज्ञान बढ़ा सकता है, यहां तक कि उनसे भी जिनसे वे सहमत नहीं हो सकते। पोप लियो ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, ऐसे हालात में धैर्य एवं लगन से धीरे धीरे गलतफहमी और भरोसे की किसी भी रुकावट को तोड़ने की दिशा में काम करना संभव है। संत पापा ने कहा कि ईश्वर हमसे दुनिया में शांति लाने के लिए अपने माध्यम बनने के लिए कहते हैं, जिसके लिए हमें शुरुआत खुद से करनी होगी। उन्होंने कहा, शांति को नामुमकिन एवं हमारी पहुंच से बाहर बनाने के बजाय हमें इसे अपने समुदायों में बढ़ावा देना चाहिए और अपने जीवन में इसका स्वागत करना चाहिए। अंत में पोप ने उम्मीद जताई कि शांति निर्माताओं को तैयार करके यूनिवर्सिटी समुदाय एक ऐसी दुनिया में उम्मीद एवं एकता की किरण बन सकता है जो तेजी से बढ़ती जा रही है। पोप लियो 14वें ने स्पैनिश सिविल युद्ध के दौरान धर्म से नफरत में शहीद हुए 20 पुरोहितों के संत बनने और 5 ईश सेवकों के विरोचित सद्गुणों को मान्यता दी, जिनका जीवन मिशनरी जोश, उदारता, प्रार्थना और कलीसिया की निष्ठापूर्ण सेवा से पहचाना जाता है। संत पोप लियो 14वें ने वैटिकन के संत प्रकरण विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल मार्चेलो सेमेरारो के साथ एक मुलाकात में संत घोषणा हेतु नए उम्मीदवारों की आज्ञाप्तियों को अनुमोदन दिया। ईश सेवक शहीद जुआन तेरेस और उनके 19 साथी जो धर्म प्रांतीय पुरोहित थे, वे स्पेन में अगस्त और सितंबर 1936 के बीच विश्वास के प्रति घृणा के कारण अत्याचार के शिकार हुए। ईश सेवक जूलियो मारिया दी लोम्बार्दे पौत्र परिवार को समर्पित मिशनरी धर्म संघ के सदस्य एवं मरिया के निष्कलंक हृदय की पुत्रियों के धर्म संघ, पौत्रतम संस्कार की कुंवारी मरियम की मिशनरी धर्म संघ और पौत्रतम संस्कार के हमारे प्रभु की धर्म बहनों के धर्म संघ के संस्थापिका थी। उनका जन्म बेल्जियम में हुआ था। ईश सेविका मरिया तेरेसा तालोन निष्कलंक मरिया के पल्ली दौरे के लिए समर्पित धर्म संघ की संस्थापिका है। उनका जन्म 10 मार्च 1954 को अमेरिका में हुआ था। ईश सेविका मरिया अग्नेस त्रिवियोली सन जोसेफ के धर्मी सेवक धर्म संघ के सदस्य और संस्थापिका थी। उनका जन्म 20 अप्रैल 1879 को इटली में हुआ था। ईश सेविका क्लारा एंड्रू वाई मालफेरी इंका के संत बर्थोलोमियो के जेरोम मठ की मठवासी थीं और ईश सेविका मरिया पेत्रा जोर्दानो प्रचारकों के ऑर्डर की मठवासी धर्म बहन थीं। उनका जन्म 4 जुलाई 1912 को इटली में हुआ था और निधन 21 जून 2006 को इटली में हुआ।
भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन बिल 2026 पर चिंताओं के बीच 28 जून को राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस मनाने का आह्वान किया है। भारतीय कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने देश भर के सभी कैथलिकों से रविवार 28 जून को राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस मनाने की अपील की है। यह अपील प्रस्तावित विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम संशोधन बिल 2026 से जुड़ी चिंताओं के जवाब में की गई है। उम्मीद है कि इस बिल पर संसद के आने वाले मानसून सत्र में चर्चा होगी। भारत में कार्तिक कलीसिया के सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों को भेजे गए एक पत्र में सीबीसीआई के अध्यक्ष कार्डिनल एंटोनी फुले ने सभी विश्वासियों को देश, सरकारी अधिकारियों और सेवा के अपने मिशन को कलीसिया स्वतंत्र पूर्वक जारी रख सके, इसके लिए प्रार्थना में एक साथ आने हेतु आमंत्रित किया है। पत्र में कहा गया है कि प्रस्तावित कानून ने पूरे देश में कलीसियाओं और क्रिश्चियन संस्थानों द्वारा किए जाने वाले चैरिटेबल, शैक्षणिक, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक प्रेरित आय पर इसके संभावित असर को लेकर चिंता पैदा की है। समाज के गरीब, हाशिए पर पड़े और कमजोर तबके की सेवा करने की कलीसिया के लंबे समय से चले आ रहे समर्पण को याद करते हुए कार्डिनल पुले ने इस बात पर जोर दिया है, ये प्रेरिताय प्यार, न्याय एवं दया के सुसमाचारी मूल्यों का एक ठोस उदाहरण है। विश्वास एवं एकता की भावना का आह्वान करते हुए सीबीसीआई अध्यक्ष ने दूसरे कलीसियाओं और ख्रिस्त समुदायों के साथ मिलकर चिंतन एवं प्रार्थना करने का आग्रह किया है। उन्होंने विश्वासियों को पौत्र मिस्सा, पौत्र संस्कार की आराधना, रोजरी माला विनती, प्रार्थना सभा और स्वेच्छा से उपवास द्वारा ईश्वर की प्रज्ञा, मार्गदर्शन और सुरक्षा पाने के लिए प्रोत्साहित किया है। बोर्गो वार्ता हमारे आम घर की देखभाल पर बातचीत के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जिसका उद्घाटन कस्तिल गंदोल्फो स्थित पोप के उद्यान में हो रहा है। पर्यावरण के प्रतिनिधियों ने लाउदातो सी गांव में वैश्विक मैत्री लॉन्च किया। 17 से 19 जून 2026 तक बोर्गो लाउदातो सी या लाउदातो सी गांव बोर्गो लाउदातो सी वार्ता के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
0: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: भैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद। प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है,
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु येसु को क्रूस पर ठोका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नवियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके

हमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। पिता और

0: संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच रविवार 14 जून को एक नए शांति समझौते पर सहमति की घोषणा का स्वागत किया है और इसे हिंसक टकराव की समाप्ति और आपसी सुलह की राह में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। यूएन महासचिव के प्रवक्ता की ओर से जारी एक वक्तव्य के अनुसार, यह सहमति तत्काल व स्थायी युद्ध विराम को अमल में लाने, होर्मुज जलडमरू मध्य मार्ग को फिर से खोलने और वार्ता को आगे बढ़ाने का फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यूएन प्रमुख ने समझौते के लिए वार्ता के समर्थन में पाकिस्तान, कदर, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और अन्य क्षेत्रीय देशों द्वारा निभाई गई भूमिका की गहरी सराहना की। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए हुए शुरुआती समझौते का स्वागत किया है। एजेंसी दोनों पक्षों के साथ मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सत्यापन जैसे अहम मुद्दों पर ठोस कदम तय करने में मदद करने के लिए तैयार है। मीडिया खबरों के अनुसार समझौता ज्ञापन में अधिकतम 60 दिनों की बातचीत के बाद एक अंतरिम समझौते तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। बातचीत में ईरान के यूरेनियम संवर्धन जैसे मुद्दे शामिल होंगे। ईरान को यह भी दोहराना होगा कि उसका परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। समझौता ज्ञापन की अन्य शर्तों में सभी जहाजों के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना और ईरान पर लगे अमेरिकी व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों में ढील देना शामिल है। इसके 14 बिंदुओं में सबसे पहले लेबनान सहित सभी मोर्चा पर सैन्य कार्यवाही को तत्काल व स्थायी रूप से समाप्त करने की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने लेबनान में जारी संकट के बीच राष्ट्रीय प्राधिकरणों और साझेदारों के साथ मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने और विश्वसनीय सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास तेज किए हैं। संगठन के मुताबिक ये व्यवस्थाएं देश भर के समुदायों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
2: संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने लेबनान में जारी संकट के बीच राष्ट्रीय एजेंसियों और साझेदारों के साथ मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयास तेज किए हैं, साथ ही सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करने और विश्वसनीय सूचना तक पहुंच भी सुनिश्चित की जा रही है। संगठन ने कहा कि ये व्यवस्थाएं देश भर के समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेबनान में इजरायली सैन्य बलों और हिजबुल्ला संगठन के बीच कुछ महीने पहले हिंसक टकराव भड़क उठा था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए, अनेक स्कूल क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके हैं और 5 लाख बच्चे कक्षाओं से बाहर हैं। शिक्षा के सभी स्तरों पर 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हुई है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 17 स्कूल पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं और 100 से अधिक स्कूलों को नुकसान पहुंचा है।
1: अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन उनामा ने हैरात शहर के जिब्राइल क्षेत्र में 9 जून को उस कार्यवाही पर भी गंभीर चिंता जताई जिसमें लेबनान की सुरक्षा दलों ने ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में 6 और 7 जून के बीच कम से कम 30 महिलाओं को गिरफ्तार किया। महिलाओं की मनमानी गिरफ्तारियों के विरोध में एकत्र हुए स्थानीय निवासियों के विरुद्ध कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग किया गया। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने तालिबान प्रशासन से एक बार फिर आग्रह किया है कि वह महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने वाली सभी नीतियों व प्रथाओं को वापस ले ले। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
3: अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन यूनामा ने हेरात शहर में महिलाओं की गिरफ्तारियों और प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक

0: बल प्रयोग किए जाने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यूनामा के अनुसार सत्तारूढ़ तालिबान के सदाचार के प्रसार और अवगुणों की रोकथाम विभाग व पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर निर्धारित ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में 6 और 7 जून के बीच हरात में कम से कम 30 महिलाओं को गिरफ्तार किया था। हालांकि इन महिलाओं को 8 जून को रिहा कर दिया गया, लेकिन अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की उप विशेष प्रतिनिधि और यूनामा की कार्यवाहक प्रमुख जॉर्जेट गैग्नोन ने कहा है कि देश में किसी महिला की गिरफ्तारी उससे जुड़ी सामाजिक बदनामी को जन्म देती है, जिसके कारण रिहाई के बाद भी महिलाओं को अपने परिवारों और समुदायों में हिंसा, बहिष्कार, मनोवैज्ञानिक दबाव और सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ सकता है।
1: कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC के पूर्वी हिस्से में इबोला वायरस से संक्रमित लोगों के उपचार के लिए स्वास्थ्य देखभाल क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि स्थानीय समुदायों में भरोसे का अभाव इबोला के प्रकोप पर नियंत्रण पाने में सबसे बड़ी बाधा है। DRC में घातक इबोला वायरस के फैलाव के बीच आने वाले दिनों में बच्चों में भी संक्रमण मामलों में उछाल दर्ज किए जाने की आशंका बढ़ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
2: संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने आगाह किया है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC में घातक इबोला वायरस के फैलाव के बीच आने वाले दिनों में बच्चों में भी संक्रमण मामलों में उछाल दर्ज किए जाने की आशंका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हर दिन अलग अलग इलाकों में नए संक्रमण मामलों की शिनाख्त की जा रही है, जिससे इस प्रकोप का बड़ा स्तर नजर आता है। इसकी एक बड़ी वजह DRC के पूर्वी हिस्से में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही है। पूर्वी DRC के इतुरी प्रांत के अलावा उत्तर कीवू प्रांत के नए इलाकों में भी ये मामले सामने आए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बताया है कि इबोला एक घातक संक्रमण है, लेकिन इसके फैलाव के तरीके COVID-19 वायरस से अलग हैं। ये आमतौर से शरीर से निकलने वाले द्रव्यों के संपर्क में आने से फैलता है। इसके मद्देनजर यूनिसेफ ने कहा है कि जो बच्चे स्कूल जा सकते हैं उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए और फिलहाल स्कूल बंद किए जाने की कोई वजह नहीं है।
1: भारत में तंबाकू सेवन की लत से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वाले लोगों को निशुल्क राष्ट्रीय परामर्श सेवा सही मार्गदर्शन और सहारा दे रही है। ये सेवा विशेषज्ञों की सलाह, नियमित संपर्क और कई भारतीय भाषाओं में सहायता के जरिए लोगों को तंबाकू सेवन की लत से बाहर आने में मदद करती है। इस सेवा में संपर्क करना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। यह एक व्यवस्थित तंबाकू त्याग योजना के तहत काम करती है। तंबाकू उपयोग करने वाले लोग प्रशिक्षित परामर्शदाताओं से बातें करते हैं, जो पहले उनका पंजीकरण एवं आकलन करते हैं, फिर उन्हें चरणबद्ध तरीके से तंबाकू छोड़ने में मदद देते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
0: भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में हर वर्ष तंबाकू उपयोग के कारण लगभग 13 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तंबाकू छोड़ने की चाहत रखने वाले लोगों की मदद के लिए मंत्रालय की निशुल्क राष्ट्रीय तंबाकू परामर्श सेवा फोन नंबर 1800112356 के माध्यम से सलाह और सहयोग उपलब्ध कराती है। इस हेल्पलाइन पर प्रशिक्षित परामर्शदाता प्रमाण आधारित सहायता, व्यक्तिगत योजना और नियमित संपर्क के जरिए लोगों को तंबाकू की लत से बाहर आने में मदद देते हैं। ये सहायता अंग्रेजी, हिंदी और 15 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।
1: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन में शुक्रवार को बोर्गो डायलोगिस कार्य शिविर के प्रतिभागियों ने संत पापा लियो 14वें का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। इस अवसर पर संत पापा ने कहा कि बोर्गो डायलोगिस कार्य शिविर उस प्रक्रिया का पहला कदम है जिसका लक्ष्य ऐसे विश्व में नैतिक नेतृत्व को नवीकृत करना है जो आज टूटी फूटी है और अपनी ऐतिहासिक जड़ों को भूली हुई लगती है। रोम शहर के परिसर में कास्टल गोंडोल्फो स्थित बोर्गो लाउदातो सी उद्यान में बोर्गो डायलोगिस अर्थात संवाद का स्थल शीर्षक से पहली बार कार्य शिविर सम्पन्न हुआ। संत पापा ने कहा कि प्रतिभागियों ने उन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जो कि वर्तमान विश्व में तर्क संगत हैं और जिनके प्रति कैथलिक कलीसिया भी चिंतित है। इनमें संत पापा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मानवता के साथ इसका संबंध, वृद्धावस्था और सत्ता, खेल और कूटनीति तथा धारणीय विकास का भविष्य गिनाया। संत पापा ने कहा कि उक्त कार्य शिविर में भाग लेकर प्रतिभागियों ने उनकी उस मनोकामना को पूरा किया है जिसे उन्होंने हाल ही में प्रकाशित अपने विश्व पत्र मैग्निफिका उमानितास में व्यक्त किया था, और वह यह कि अपने युग के सभी स्त्री पुरुषों के साथ संवाद करना, उनके साथ मिलकर जन कल्याण और सभी के लिए सम्मानजनक जीवन को बढ़ावा देना। संत पापा ने कहा कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब हम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से अंधे हो चले हैं। एक मिथ्या व्यावहारिक सोच हमें अपने इतिहास की जड़ों को काटने के लिए उकसाती है, मानो अतीत से अलग एक तरह की नई रचना की शुरुआत करना संभव हो। उन्होंने कहा, जो लोग जरूरी नैतिक सिद्धांतों का हवाला देते हैं वे भी इस ऐतिहासिक शून्यवाद में पड़ सकते हैं, और उन्हें भी यह भ्रम हो सकता है कि 20वीं सदी के अत्याचार फिर कभी नहीं हो सकते। संत पापा ने स्मरण दिलाया कि बोर्गो डायलोगिस कैथलिक कलीसिया के दर्शन और दृष्टि पर संरचित संवाद शिविर है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर सुनकर वैश्विक एकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा, बाबुल की मीनार बनाने के प्रलोभन के समक्ष जो सबसे कमजोर लोगों की कीमत पर लाभ की पूजा करना सिखाता तथा इंसानियत को खत्म करने के खतरे को बढ़ाता है, हमें नए यरूशलेम अर्थात प्रेम की सभ्यता के निर्माण में योगदान देने के लिए बुलाया गया है जिसमें प्रेम ही आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत हो। उन्होंने कहा, प्रेम की सभ्यता किसी एक या शानदार कृत्य से नहीं बल्कि वफादारी के छोटे छोटे और सुनिश्चित कृत्यों के जोड़ से उत्पन्न होगी जो मानवता को समाप्त करने के खिलाफ एक मजबूत दीवार का काम करते हैं। इसी वजह से यह सोचना सही रहेगा कि हम सब अपने अपने तरीके से प्रेम की सभ्यता के निर्माण में कैसे सहयोग कर सकते हैं। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर में गुरुवार को संत पापा लियो 14वें के नेतृत्व में स्वर्गीय कार्डिनल कामिल्लो रुइनी के आदर में अंत्येष्टि याग संपन्न किया गया। दशकों तक इतालवी कलीसिया के एक महत्वपूर्ण धर्माधिकारी रहे कार्डिनल रुइनी का निधन 95 वर्ष की आयु में विगत मंगलवार को हो गया था। दिवंगत कार्डिनल रुइनी के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संत पापा लियो ने उन्हें एक समझदार और मेहनती चरवाहा निरूपित किया जिन्होंने छोटे छोटे कामों में भी और सर्वाधिक बड़ी जिम्मेदारी वाले कामों में भी कलीसिया की सेवा की तथा जो ईश प्रजा और अपने धर्माध्यक्ष भाइयों को महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षणों में भी एक मार्गदर्शक रूप में रास्ता दिखाते रहे। स्वर्गीय कार्डिनल रुइनी ने 1991 से 2008 तक रोम धर्म प्रांत के प्रति धर्माध्यक्ष तथा रोम स्थित संत जॉन लातरान महागिरजाघर के प्रधान पुरोहित रूप में अपना कार्यभार निभाया था। 1991 से 2007 तक आप इतालवी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष रूप में भी सेवाएं अर्पित करते रहे थे। ख्रिस्तियाग प्रवचन में संत पापा लियो 14वें ने कार्डिनल रुइनी द्वारा कलीसिया की सेवा में गुजारे उन कई वर्षों के लिए ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया जिसके दौरान कार्डिनल रुइनी ने अपनी सोच, समझ और विवेक से इटली की कलीसिया के लिए कई योजनाओं और पहलों को अंजाम दिया था। अजरबैजान की राजधानी बाकू में वैटिकन के वरिष्ठ कार्डिनल तथा धर्मों के बीच संवाद संबंधी परम धर्म पीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल जॉर्ज जेकब कुवाकर्ड ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात की तथा उनके प्रति मेजबान देश द्वारा दिए गए हार्दिक स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया।
15 से 19 जून तक धर्मों के बीच संवाद संबंधी परम धर्म पीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल जॉर्ज जेकब कुवाकर्ड अजरबैजान की आधिकारिक यात्रा पर हैं। गुरुवार 18 जून को बाकू में काउकासिको के शेख उल इस्लाम अल्लाह शुक्र पशाजादे के आवास पर कार्डिनल ने अपने प्रभाषण में परम धर्म पीठ और अजरबैजान के धार्मिक समुदायों को जोड़ने वाली लंबे समय से चली आ रही मैत्री के लिए शुक्रिया अदा किया। अजरबैजान के प्रेरित प्रतिनिधि मान्यवर व्लादिमीर फेकेते, परम धर्म पीठीय राजदूत इलगर मुख्तारोव और स्थानीय ईसाई एवं यहूदी समुदायों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्डिनल कुवाकर्ड ने 2002 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय और 2016 में संत पापा फ्रांसिस की अजरबैजान प्रेरित यात्राओं का स्मरण दिलाया, जिसके दौरान हुई मुलाकातों और पहलों द्वारा दोनों सच्चाइयों के बीच संबंधों को मजबूत किया गया। कार्डिनल ने इस बात पर जोर दिया कि द्वितीय वैटिकन महासभा द्वारा गैर ईसाई धर्मों के साथ कलीसिया के रिश्ते पर घोषणा नोस्त्रा एताते की शिक्षा से प्रेरित होकर ईसाइयों और मुसलमानों ने इस तरह शांति की सेवा में साथ चलने की कोशिश की है, यह मानते हुए कि हम एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में 2011 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौता और विगत वर्ष धार्मिक सहयोग एवं परस्पर समझदारी पर हस्ताक्षरित ज्ञापन इस बात को साबित करते हैं कि बातचीत सिर्फ विचारों का लेन देन नहीं है, बल्कि गहरी समझ, विश्वास और सहयोग का रास्ता है। रोम स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम WFO की हाल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यमन, सूडान और फिलिस्तीन भुखमरी के केंद्र बन रहे हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम WFO ने विश्व के 13 ऐसे देशों को गिनाया है जिन्हें भूख के हॉटस्पॉट बताया गया है और जहां लाखों लोग क्षुधा पीड़ित हैं। इनमें यमन, सूडान और फिलिस्तीन सहित उत्तर पूर्वी नाइजीरिया, बोर्नो और सोमालिया भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार भुखमरी का प्रमुख कारण इन क्षेत्रों में जारी सशस्त्र संघर्ष और युद्ध हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच रविवार 14 जून को एक नए शांति समझौते पर सहमति की घोषणा का स्वागत किया है और इसे हिंसक टकराव की समाप्ति और आपसी सुलह की राह में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। यूएन महासचिव के प्रवक्ता की ओर से जारी एक वक्तव्य के अनुसार, यह सहमति तत्काल व स्थायी युद्ध विराम को अमल में लाने, होर्मुज जल डमरू मध्य मार्ग को फिर से खोलने और वार्ता को आगे बढ़ाने का फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यूएन प्रमुख ने समझौते के लिए वार्ता के समर्थन में पाकिस्तान, कदर, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और अन्य क्षेत्रीय देशों द्वारा निभाई गई भूमिका की गहरी सराहना की। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए हुए शुरुआती समझौते का स्वागत किया है। एजेंसी दोनों पक्षों के साथ मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सत्यापन जैसे अहम मुद्दों पर ठोस कदम तय करने में मदद करने के लिए तैयार है। मीडिया खबरों के अनुसार समझौता ज्ञापन में अधिकतम 60 दिनों की बातचीत के बाद एक अंतरिम समझौते तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। बातचीत में ईरान के यूरेनियम संवर्धन जैसे मुद्दे शामिल होंगे। ईरान को यह भी दोहराना होगा कि उसका परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। समझौता ज्ञापन की अन्य शर्तों में सभी जहाजों के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना और ईरान पर लगे अमेरिकी व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों में ढील देना शामिल है। इसके 14 बिंदुओं में सबसे पहले लेबनान सहित सभी मोर्चा पर सैन्य कार्यवाही को तत्काल व स्थायी रूप से समाप्त करने की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने लेबनान में जारी संकट के बीच राष्ट्रीय प्राधिकरणों और साझेदारों के साथ मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने और विश्वसनीय सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास तेज किए हैं। संगठन के मुताबिक ये व्यवस्थाएं देश भर के समुदायों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
3: संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने लेबनान में जारी संकट के बीच राष्ट्रीय एजेंसियों और साझेदारों के साथ मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयास तेज किए हैं, साथ ही सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करने और विश्वसनीय सूचना तक पहुंच भी सुनिश्चित की जा रही है। संगठन ने कहा कि ये व्यवस्थाएं देश भर के समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेबनान में इजरायली सैन्य बलों और हिजबुल्ला संगठन के बीच कुछ महीने पहले हिंसक टकराव भड़क उठा था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए, अनेक स्कूल क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके हैं और 5 लाख बच्चे कक्षाओं से बाहर हैं। शिक्षा के सभी स्तरों पर 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हुई है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 17 स्कूल पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं और 100 से अधिक स्कूलों को नुकसान पहुँचा है।
2: अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन उनामा ने हैरात शहर के जिब्राइल क्षेत्र में 9 जून को उस कार्यवाही पर भी गंभीर चिंता जताई जिसमें लेबनान की सुरक्षा दलों ने ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में 6 और 7 जून के बीच कम से कम 30 महिलाओं को गिरफ्तार किया। महिलाओं की मनमानी गिरफ्तारियों के विरोध में एकत्र हुए स्थानीय निवासियों के विरुद्ध कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग किया गया। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने तालिबान प्रशासन से एक बार फिर आग्रह किया है कि वह महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने वाली सभी नीतियों व प्रथाओं को वापस ले ले। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
4: अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन यूनामा ने हेरात शहर में महिलाओं की गिरफ्तारियों और प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यूनामा के अनुसार सत्तारूढ़ तालिबान के सदाचार के प्रसार और अवगुणों की रोकथाम विभाग व पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर निर्धारित ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में 6 और 7 जून के बीच हेरात में कम से कम 30 महिलाओं को गिरफ्तार किया था। हालांकि इन महिलाओं को 8 जून को रिहा कर दिया गया, लेकिन अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की उप विशेष प्रतिनिधि और यूनामा की कार्यवाहक प्रमुख जॉर्जेट गैग्नोन ने कहा है कि देश में किसी महिला की गिरफ्तारी उससे जुड़ी सामाजिक बदनामी को जन्म देती है जिसके कारण रिहाई के बाद भी महिलाओं को अपने परिवारों और समुदायों में हिंसा, बहिष्कार, मनोवैज्ञानिक दबाव और सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ सकता है।
2: कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC के पूर्वी हिस्से में इबोला वायरस से संक्रमित लोगों के उपचार के लिए स्वास्थ्य देखभाल क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि स्थानीय समुदायों में भरोसे का अभाव इबोला के प्रकोप पर नियंत्रण पाने में सबसे बड़ी बाधा है। DRC में घातक इबोला वायरस के फैलाव के बीच आने वाले दिनों में बच्चों में भी संक्रमण मामलों में उछाल दर्ज किए जाने की आशंका बढ़ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
3: संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने आगाह किया है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC में घातक इबोला वायरस के फैलाव के बीच आने वाले दिनों में बच्चों में भी संक्रमण मामलों में उछाल दर्ज किए जाने की आशंका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हर दिन अलग अलग इलाकों में नए संक्रमण मामलों की शिनाख्त की जा रही है जिससे इस प्रकोप का बड़ा स्तर नजर आता है। इसकी एक बड़ी वजह DRC के पूर्वी हिस्से में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही है। पूर्वी DRC के इतुरी प्रांत के अलावा उत्तर कीवू प्रांत के नए इलाकों में भी ये मामले सामने आए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बताया है कि इबोला एक घातक संक्रमण है लेकिन इसके फैलाव के तरीके COVID-19 वायरस से अलग हैं। ये आमतौर से शरीर से निकलने वाले द्रव्यों के संपर्क में आने से फैलता है। इसके मद्देनजर यूनिसेफ ने कहा है कि जो बच्चे स्कूल जा सकते हैं उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए और फिलहाल स्कूल बंद किए जाने की कोई वजह नहीं है।
2: भारत में तंबाकू सेवन की लत से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वाले लोगों को निशुल्क राष्ट्रीय परामर्श सेवा सही मार्गदर्शन और सहारा दे रही है। ये सेवा विशेषज्ञों की सलाह, नियमित संपर्क और कई भारतीय भाषाओं में सहायता के जरिए लोगों को तंबाकू सेवन की लत से बाहर आने में मदद करती है। इस सेवा में संपर्क करना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। यह एक व्यवस्थित तंबाकू त्याग योजना के तहत काम करती है। तंबाकू उपयोग करने वाले लोग प्रशिक्षित परामर्शदाताओं से बातें करते हैं जो पहले उनका पंजीकरण एवं आकलन करते हैं, फिर उन्हें चरणबद्ध तरीके से तंबाकू छोड़ने में मदद देते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
4: भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में हर वर्ष तंबाकू उपयोग के कारण लगभग 13 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तंबाकू छोड़ने की चाहत रखने वाले लोगों की मदद के लिए मंत्रालय की निशुल्क राष्ट्रीय तंबाकू परामर्श सेवा फोन नंबर 1800112356 के माध्यम से सलाह और सहयोग उपलब्ध कराती है। इस हेल्पलाइन पर प्रशिक्षित परामर्शदाता प्रमाण आधारित सहायता, व्यक्तिगत योजना और नियमित संपर्क के जरिए लोगों को तंबाकू की लत से बाहर आने में मदद देते हैं। ये सहायता अंग्रेजी, हिंदी और 15 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन में शुक्रवार को बोर्गो डायलोगस कार्य शिविर के प्रतिभागियों ने संत पापा लियो 14वें का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। इस अवसर पर संत पापा ने कहा कि बोर्गो डायलोगस कार्य शिविर उस प्रक्रिया का पहला कदम है जिसका लक्ष्य ऐसे विश्व में नैतिक नेतृत्व को नवीकृत करना है जो आज टूटी फूटी है और अपनी ऐतिहासिक जड़ों को भूली हुई लगती है। रोम शहर के परिसर में कास्टल गोंदोल्फो स्थित बोर्गो लाउदातो सी उद्यान में बोर्गो डायलोगस अर्थात संवाद का स्थल शीर्षक से पहली बार कार्य शिविर सम्पन्न हुआ। संत पापा ने कहा कि प्रतिभागियों ने उन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जो कि वर्तमान विश्व में तर्क संगत हैं और जिनके प्रति कैथलिक कलीसिया भी चिंतित है। इनमें संत पापा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मानवता के साथ इसका संबंध, वृद्धावस्था और सत्ता, खेल और कूटनीति तथा धारणीय विकास का भविष्य गिनाया। संत पापा ने कहा कि उक्त कार्य शिविर में भाग लेकर प्रतिभागियों ने उनकी उस मनोकामना को पूरा किया है जिसे उन्होंने हाल ही में प्रकाशित अपने विश्व पत्र मैग्निफिका उमानितास में व्यक्त किया था और वह यह कि अपने युग के सभी स्त्री पुरुषों के साथ संवाद करना, उनके साथ मिलकर जन कल्याण और सभी के लिए सम्मानजनक जीवन को बढ़ावा देना। संत पापा ने कहा कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब हम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से अंधे हो चले हैं। एक मिथ्या व्यावहारिक सोच हमें अपने इतिहास की जड़ों को काटने के लिए उकसाती है, मानो अतीत से अलग एक तरह की नई रचना की शुरुआत करना संभव हो। उन्होंने कहा, जो लोग जरूरी नैतिक सिद्धांतों का हवाला देते हैं वे भी इस ऐतिहासिक शून्यवाद में पड़ सकते हैं और उन्हें भी यह भ्रम हो सकता है कि 20वीं सदी के अत्याचार फिर कभी नहीं हो सकते। संत पापा ने स्मरण दिलाया कि बोर्गो डायलोगस कैथलिक कलीसिया के दर्शन और दृष्टि पर संरचित संवाद शिविर है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर सुनकर वैश्विक एकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा, बाबुल की मीनार बनाने के प्रलोभन के समक्ष जो सबसे कमजोर लोगों की कीमत पर लाभ की पूजा करना सिखाता तथा इंसानियत को खत्म करने के खतरे को बढ़ाता है, हमें नए यरूशलेम अर्थात प्रेम की सभ्यता के निर्माण में योगदान देने के लिए बुलाया गया है जिसमें प्रेम ही आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत हो। उन्होंने कहा, प्रेम की सभ्यता किसी एक या शानदार कृत्य से नहीं बल्कि वफादारी के छोटे छोटे और सुनिश्चित कृत्यों के जोड़ से उत्पन्न होगी जो मानवता को समाप्त करने के खिलाफ एक मजबूत दीवार का काम करते हैं। इसी वजह से यह सोचना सही रहेगा कि हम सब अपने अपने तरीके से प्रेम की सभ्यता के निर्माण में कैसे सहयोग कर सकते हैं। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर में गुरुवार को संत पापा लियो 14वें के नेतृत्व में स्वर्गीय कार्डिनल कामिल्लो रुइनी के आदर में अंत्येष्टि याग संपन्न किया गया। दशकों तक इतालवी कलीसिया के एक महत्वपूर्ण धर्माधिकारी रहे कार्डिनल रुइनी का निधन 95 वर्ष की आयु में विगत मंगलवार को हो गया था। दिवंगत कार्डिनल रुइनी के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संत पापा लियो ने उन्हें एक समझदार और मेहनती चरवाहा निरूपित किया जिन्होंने छोटे छोटे कामों में भी और सर्वाधिक बड़ी जिम्मेदारी वाले कामों में भी कलीसिया की सेवा की तथा जो ईश प्रजा और अपने धर्माध्यक्ष भाइयों को महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षणों में भी एक मार्गदर्शक रूप में रास्ता दिखाते रहे। स्वर्गीय कार्डिनल रुइनी ने 1991 से 2008 तक रोम धर्म प्रांत के प्रतिधर्माध्यक्ष तथा रोम स्थित संत जॉन लातरान महागिरजाघर के प्रधान पुरोहित रूप में अपना कार्यभार निभाया था। 1991 से 2007 तक आप इतालवी धर्माधीक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष रूप में भी सेवाएं अर्पित करते रहे थे। ख्रीस्तियाग प्रवचन में संत पापा लियो 14वें ने कार्डिनल रुइनी द्वारा कलीसिया की सेवा में गुजारे उन कई वर्षों के लिए ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया जिसके दौरान कार्डिनल रुइनी ने अपनी सोच, समझ और विवेक से इटली की कलीसिया के लिए कई योजनाओं और पहलों को अंजाम दिया था। अजरबैजान की राजधानी बाकू में वैटिकन के वरिष्ठ कार्डिनल तथा धर्मों के बीच संवाद संबंधी परम धर्मपीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल जॉर्ज जेकब कुवाकर्ड ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात की तथा उनके प्रति मेजबान देश द्वारा दिए गए हार्दिक स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया।
15 से 19 जून तक धर्मों के बीच संवाद संबंधी परमधर्म पीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल जॉर्ज जेकब कुवाकर्ड अजरबैजान की आधिकारिक यात्रा पर हैं। गुरुवार 18 जून को बाकू में काउकासिको के शेख उल इस्लाम अल्लाह शुक्र पशाजादे के आवास पर कार्डिनल ने अपने प्रभाषण में परमधर्म पीठ और अजरबैजान के धार्मिक समुदायों को जोड़ने वाली लंबे समय से चली आ रही मैत्री के लिए शुक्रिया अदा किया। अजरबैजान के प्रेरित प्रतिनिधि मान्यवर व्लादिमीर फेकेते, परमधर्म पीठीय राजदूत इल्गर मुख्तारोव और स्थानीय ईसाई एवं यहूदी समुदायों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्डिनल कुवाकर्ड ने 2002 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय और 2016 में संत पापा फ्रांसिस की अजरबैजान प्रेरित यात्राओं का स्मरण दिलाया, जिसके दौरान हुई मुलाकातों और पहलों द्वारा दोनों सच्चाइयों के बीच संबंधों को मजबूत किया गया। कार्डिनल ने इस बात पर जोर दिया कि द्वितीय वैटिकन महासभा द्वारा गैर ईसाई धर्मों के साथ कलीसिया के रिश्ते पर घोषणा नोस्त्रा एताते की शिक्षा से प्रेरित होकर ईसाइयों और मुसलमानों ने इस तरह शांति की सेवा में साथ चलने की कोशिश की है, यह मानते हुए कि हम एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में 2011 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौता और विगत वर्ष धार्मिक सहयोग एवं परस्पर समझदारी पर हस्ताक्षरित ज्ञापन इस बात को साबित करते हैं कि बातचीत सिर्फ विचारों का लेन देन नहीं है, बल्कि गहरी समझ, विश्वास और सहयोग का रास्ता है। रोम स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम WFO की हाल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यमन, सूडान और फिलिस्तीन भुखमरी के केंद्र बन रहे हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम WFO ने विश्व के 13 ऐसे देशों को गिनाया है जिन्हें भूख के हॉटस्पॉट बताया गया है और जहां लाखों लोग क्षुधा पीड़ित हैं। इनमें यमन, सूडान और फिलिस्तीन सहित उत्तर पूर्वी नाइजीरिया, बोर्नो और सोमालिया भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार भुखमरी का प्रमुख कारण इन क्षेत्रों में जारी सशस्त्र संघर्ष और युद्ध हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।